जी बिल्कुल, ऐसे ना जाओ पिया, जुड़ी है रास्ते तुझसे मेरी। तो जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो केजे लोकल, और याद रखिए हर फ्राइडेज और हर संडेज को हम आपके साथ जो शोज है ये लेकर आ जाते हैं फ्रॉम फ्राइडे सिक्स सेवन, और इसके साथ साथ संडेज को भी अपकमिंग इवेंट्स के बारे में हम आपको फिर से याद दिला दें।

कल अगर आप इधर क्राइस्टचर्च में हैं, याद रखिए भजन क्लबिंग कल शाम को ये एल्डर्स गेट से हो रहा है इन कंजंक्शन विद आईसीसी इंडियन सोशल कल्चर क्लब. इनके साथ साथ ग्रुप फ्रॉम ओकलैंड गौरी जी और राहुल जी आप अपना टीम के साथ लेकर आ रहे हैं. राधे राय जी बुला कैसे हैं, वेलकम टू आवर शो. एंड इसके साथ साथ फिर हम जब अगस्त की ओर देखते हैं तो 22 अगस्त को शालिनी जी इनका जो टीम है हरियाली थी जी ये लेकर आ रहे हैं. ऑफ कोर्स सितंबर 19th को कैसे हम बोल सकते हैं संडे को जो शो है ये मोस्टली हमारे जो रामायण पे फोकस किया जाएगा. तो याद रखिए एट द मोमेंट व्हेन वी आर लुकिंग एट इट लेस देन 80 टिकट्स लेफ्ट. वी स्टार्टेड विद क्लोज टू 600 टिकट्स बट नाउ लेस देन 80 टिकट्स लेफ्ट. तो अगर आपने अभी भी अपने टिकट्स नहीं लिया है मेक श्योर इवेंट फाइंडर, जस इवेंट फाइंडर पे आप जाइए रामायण अ टेल ऑफ टू किंग इट विल पॉप अप एंड जॉइन अस. क्योंकि जैसे हमने कहा है कि जब हम रामायण के बारे में बात करते हैं हम में से काफ़ी लोग आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो, आप लोगों को हमसे ज़्यादा रामायण के बारे में पता होता है. पर जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो चाहे वो किसी के घर पे रामायण हो या रामनवमी हो उतने दिनों में हम सिर्फ रामायण के बारे में एक जगह का जो एक कोई एक कांड सुन पाते हैं. जैसे हमने शुरुआत में कहा बाल कांड सुन पाते हैं या फिर शायद सुंदर कांड सुन पाते हैं, काफ़ी जगह तो सुंदर कांड ज़्यादा करके होता है. पर 19 सितंबर अ टेल ऑफ टू किंग रेडियो KJ विथ ऑल आवर सपोर्टर्स जो हम लेकर आ रहे हैं ये पूरा आपको सुनने को मिलेगा. इस द एंटायर रामायण का जो कहानी है राम जी के बारे में, राम जी का जन्म के बारे में, राम जी का वनवास जाना, हनुमान जी का आना और जैसे इसका नाम है टेल ऑफ टू किंग्स. सो हु इज द अदर किंग, शायद आपको पता होगा दे आर टू किंग्स. जब भी हम बात करते काफ़ी लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि आप लोगों ने टू किंग्स कर दिया एंड आई सेड यस, जो दूसरा किंग था वो भी तो किंग ही था ना. अपने जहां का भी है कर्म जो किया है गलत किया है पर जब हम उनका जो पहचान है उनका पहचान एक राजा के रूप में है इसीलिए हाँ टेल ऑफ टू किंग्स. आई थिंक जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है. हम सभी का अपने धर्म पे व्यू बहुत ही डिफरेंट होता है और कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर कुछ कोशिश ये लगी रहती है कि हम अपने धर्म को सामने लाए, अपने कल्चर को सामने लाए, हमें जो एज किड्स सिखाया गया था ये सामने लेकर आए. पर क्या कर सकते हैं, यू नो क्या कर सकते हैं, हमारे जो पीपल का थिंकिंग है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और डिफरेंट लोग एक हमारे धर्म को डिफरेंट वे से देखते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है. पर बात जब मुश्किल की आती है तो जब हमारे सभी जो देवी देवता है, जब राम जी मुश्किल सह सकते हैं, भगवान कृष्णा मुश्किल सह सकते हैं तो फिर हम कौन है. तो क्यों ना यूनिक एक आज के लिए निकले हैं, मुश्किलों की सामना तो ज़रूर करने पड़ेगी. पर यस वाइल सेइंग दैट अगर आपने अभी भी अपना टिकट नहीं लिया तो डेफिनेटली यस बाबू आई ट्राई टू डू सम लाइव वे. आई थिंक यू सो इट द अदर डे ही स्कोर्ड अ पेनल्टी आई थिंक ही फ्रॉम द लेफ्ट बैक ही वेंट चार्जिंग एंड ही किक्ड इट एंड इट हिट वन ऑफ द डिफेंडर्स हैंड. सो सिंस ही वाज द वन हू किक्ड इट सो ही गॉट टू टेक द पेनल्टी. यस सो यस ये थी आज की जो हमारी यानी 19 सितंबर को जो रामायण हो रहा है. क्योंकि कल जब हम भजन क्लबिंग में जाएंगे और क्या पता यू नो वहां पर भी काफी लोग रोएंगे और कल हम जब वहां पे बताएंगे भजन क्लबिंग में रामायण के बारे में तो ऐसा ना हो कि आप में से कोई देख रहा है यही सोच रहा है कि चलो कोई नहीं हम मंडे ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक टिकट बुक करेंगे एंड कम टुमारो सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाए और संडे को या मंडे को रेडियो KJ लगा दे रामायण अ टेल ऑफ टू किंग्स सोल्ड आउट. सो यू विल बी यू नो थिंकिंग कि अरे आई मिस्ड आउट. सो मे बी डू नॉट हैव दैट सिचुएशन और मेक श्योर दैट यू डू गेट योर टिकट. चलो हमारे साथ जैसे हमने कहा है कि कुछ लोग जुड़ते हैं थ्रू ऑनलाइन और जीबी जी को लगता है जीबी जी भूल गए कि हम 6 to 7 रेडियो शो पे रहते हैं. जी हाँ सॉरी आई हैड टू मे बी अदरवाइज फोन वुड हैव बीन वाइब्रेटिंग. सो शायद जीबी जी भूल गई है कि हम रेडियो शो एट द मोमेंट कर रहे हैं. पर चलो आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं अगला जो गीत है इसमें हम आपको याद कर लेते हैं और एक से एक अच्छे अच्छे गीत दस में सही कि बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स टू थिंक कि कौन सा गीत प्ले करे या कौन सा गीत नहीं प्ले करे. आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द रीज़न यू माइट हैव सीन दैट कीप टर्निंग बैक एंड लुकिंग. आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग हमारे जो के कुछ टीम मेंबर्स है दे आर कमिंग फॉर मीटिंग हियर. सो जी हाँ यहाँ पर ये रेडियो शो फिनिश होने के बाद वी आर हैविंग अ स्मॉल मीटिंग एंड देन इस मीटिंग के बाद वी आर ऑल्सो डूइंग सम मोर रेडियो वर्क रामायण की वर्क. सो प्लीज इस गीत में जितने लोग हैं हमारे साथ आप सभी को हम याद करना चाहते हैं. ये रेडियो KJ का जो साथ है आपका साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है. चलिए इस गीत में हम आपको याद कर लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हम शो की और यू नो गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो

0: quality boost.
1: ओके धीरे धीरे जैसे जैसे हम शो के एंड की ओर जा रहे हैं, आई थिंक मेरा जो यहाँ पर नॉर्मली हम जो शोज लेकर आते हैं वी यूजली प्ले इट ऑन यूट्यूब के माध्यम से प्ले करते हैं या जो भी यहाँ पे आसान होता है ताकि यू नो लोगों तक हम ये जो गीत लेकर आए. आई थिंक आज इंटरनेट ओवरऑल बहुत स्लो है बिकॉज़ आई कैन सी इट यहाँ पर स्लो हो रहा है, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब इंटरनेट स्लो होता है फॉर अस टू प्ले सॉन्ग्स एंड फॉर अस टू यू नो डेडिकेट सॉन्ग्स टू पीपल. लॉरेंजली मनी जी, वेल बात करते करते हमारे दो स्पॉन्सर्स हमारे साथ शामिल हो गए. एक जैसे हमने कहा यूनिक एथनिक कलेक्शन, कोई भी अगर आपको एथनिक वेयर की तलाश में है तो ये नाम ज़रूर याद रखिए और हमेशा हम इनका जो वीडियोज़ है इनका जो प्रमोशन है अपने फेसबुक पर हम शेयर करते हैं. इनके साथ साथ लॉरेंजली मनी जी और रॉबर्ट मनी फ्राम MCKINZ मनीज कम्युनिटी KINZ. याद रखिए गाइस, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे जो बिजी लाइफ में हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं वो काइंड ऑफ मिस आउट, क्योंकि शायद आप काम पे हैं बट देयर इज अ फैमिली मेंबर हु आल्सो वांट्स टू गो टू द मॉल, हु आल्सो वांट्स टू गो समवेयर एंड मे बी ही और शी इज नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी. सो व्हाई डोंट यू कॉन्टेक्ट मनीज कम्युनिटी के इन एक फैमिली की तरह, एक अपने की तरह ये लोग दैल मेक श्योर दैट आपके जो चाहते लोग जो किसी कारण से आप अगर नहीं उनके साथ उनको कहीं लेकर जा सकते तो मनीज कम्युनिटी के इज देयर. द गुड thing in Islay is ki these facilities are available and the good thing is a lot of them are government funded. So yaad rakhiye MCK Manish Community Care aksar hamare Radio KJ ke Facebook page pe aap dekhte hain. Iske sath sath jo hamare Friday ka show hai ye hum aap tak lekar aate hain Jaggi Bhopal Aristo Real Estate inki taraf se. To once again Jaggi ji, aapko aapke family ko aapke entire team ko tahe dil se shukriya for always supporting us and giving us the opportunity to be your jo voice out here through रेडियो. तो गाइज आज का जो शो है इसे हम यहीं पर आज फिनिश करते हैं. जितने लोग हमारे साथ आज थे आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, खास तौर पर से अ बिग बिग विनाका एंड थैंक यू टू माय कजन बाबू ऑल द वे फ्रॉम ऑकलैंड ब्रो, यू जॉइंड अस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द शो, यू स्टेड देयर टिल द एंड. और जितने लोग

कभी जितने भी टाइम निकाल कर आए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। याद रखिए संडे का शो 6 to 7 संडे का जो शो है ये 6 to 7 हम लेकर आएंगे जहां पर हम रामायण के बारे में बात करेंगे। वी विल प्रोबली हैव वन मोर पर्सन जॉइनिंग अस डिपेंडिंग और संडे का जो शो में हम जब रामायण के बारे में बात करेंगे सो यू विल फाइंड आउट मोर। नीरज जी आप और आपके फ्रेंड्स संडे के लिए तैयार बैठिए, तन संडे को हम इसी तरह से आपके साथ शामिल हो जाएंगे कुछ नए सॉन्ग्स लेकर, कुछ पुराने नगमे लेकर, रामायण की जानकारी लेकर, इसके साथ साथ भजन क्लबिंग जो कल हो रहा है वो कैसा गया, हाउ वाज इट, ये पूरी जानकारी संडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेन्स मीडिया स्टूडियोज इन मद्रास स्ट्रीट।